प्रोग्राम का आगाज इस खूबसूरत कलाम के साथ किया है और हज 1447 मुकम्मल हो चुका है। आज है 13 ज़िलहज और यह है अयाम तशरीक। 11, 12 और 13 ज़िलहज को अयाम तशरीक कहते हैं और इन दिनों में अल्लाह का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। उमर रदी अल्लाह ने फरमाया कि अपने खेमे के अंदर तकबीर करते रहो और अल्लाह का जिक्र पढ़ते रहो। और अल्लाह सुबहान तआला का फरमान है, फिर जब तुम मनासिक हज अदा करो तो अल्लाह सुबहान तआला का जिक्र करो जिस तरह तुम अपने बाप दादा का जिक्र किया करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तशरीक के रोज़ों में हमें रोज़ा नहीं रखना चाहिए और अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। चले पढ़ते हैं तकबीर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह बहुत बड़ा है। तारीफ उसी के लिए, बेशक तमाम तारीफ उसी के लिए है। और मैसेज आया है असलम साहब और खैर हमारे रुखशान आपा की तरफ से जो कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स, अ स्पेशल ग्रीटिंग, लव एंड दुआस टू माय मॉम हुज 89 इयर्स ओल्ड एंड शी इज लिसनिंग अल्हम्दुलिल्लाह। Special greetings to Khairunisa Chogli and all Hujaj, wishing all Hujaj a Hajj Mabrook and Mabroor and enjoying Safiya's beautiful selections. Love duas from Rukshana and Aslam, not forgetting Safiya, all listeners and all technical staff, and Ameen to all Safiya's beautiful duas. Jazakallah khair aapka Aslam sahab aur Rukshana pa. Bahut dil se shukriya ada karna chahti hu main aap logo ka, aapki duaon ka, aapke hausla afzai ka. Agla kalam, ye Hajj ziyarat mubarak ho.

बेशक हज मुबारक और अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी दुआएं इबादत और तमाम नेक अमल कबूल फरमाए और हमारे घरों में ईमान बरकत सेहत मोहब्बत और खुशी अता फरमाए। जी हाँ, आजकल जिस तरह से दुनिया जा रही है नफसा नफसी और दुश्मनी जलन हसद बहुत ही बुरे हालात हैं दुनिया के, तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला सबके दिलों में रहम और मोहब्बत डाल दे। चलो कुर्बानी करते हैं अगला कलाम।

जी हाँ, हमारे तरफ से भी, महफिल कवाली की टीम की तरफ से, रेडियो 786 स्टाफ और मैनेजमेंट की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी। तो अगला कलाम भी ईद मुबारक।

बेशक, बहुत ही अच्छा कलाम है ये भी ईद मुबारक का. और क्या हम वाकई अल्लाह को अपनी ज़िंदगी में सबसे ऊपर रखते हैं? अगर कुर्बानी के बाद इंसान के दिल में नरमी, आजिज़ी और अल्लाह की तरफ वापसी पैदा हो जाए तो यही इस इबादत का सबसे खूबसूरत असर है. तो अगला कलाम भी बकरे ईद में, छोटे बच्चे बकरे लाते हैं तो उस पर है.

0: बकरे आ गए हैं, हमारा बकरा कब आएगा?
1: जोहान, महंगाई तो बहुत हो गई है। हम अल्लाह से दुआ करके पापा के साथ मंडी जाएंगे और इंशाल्लाह एक प्यारा सा बकरा लेकर आएंगे।

बेशक बहुत ही खूबसूरत था और ये थी ईद मुबारक पे चंद ट्रैक. मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू एवरीवन ऑन ड्यूटी टुनाइट, ट्रस्ट यू ऑल इन गुड हेल्थ. सुभान अल्लाह सफिया जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम टुनाइट. आई कैन नॉट एक्सप्रेस द जॉय एंड ट्रैंक्विलिटी आई फील व्हाइल लिसनिंग टू योर प्रोग्राम. द रेसिटेशंस वर सो सोलफुल, माशाल्लाह, जॉब वेल डन, मे अल्लाह एक्सेप्ट इट फ्रॉम यू, रेज योर रैंक्स एंड लेट एवरी वर्ड यू शेयर बी सदका जारिया फॉर यू, आमीन. एंड दिस कम्स फ्रॉम सिस्टर इस्लाम बसंती. Jazakallah khair for your beautiful message and I really appreciate it from the bottom of my heart, me and my technician Shabir Jacobs, and keep on making dua for us. Chale ja, aapko maa ke bagair Eid kaise rehti hai? Ye agla track hai, Eid aaye maa ke bagair.

बेशक मेरी माँ को अपनी रहमत से नवाजना, और ये ट्रैक डेडिकेट कर रहे हैं इलाही साहब अपनी वालिदा हलीमा खान इलाही के लिए। वो कहते हैं उन्होंने ये ट्रैक बहुत पसंद किया, और है भी वैसा ट्रैक कि सोचे आपकी वालिदा इस ईद पे है, अल्लाह जाने अगली ईद पे है कि नहीं। अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदरुस्ती दे, और उनका साया हमेशा आपके सर पे रखें। और हमारा अगला ट्रैक है, या रब मैं बदलना चाहती हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि बकरी ईद पे जो हम कुर्बानी करते हैं, अल्लाह ताला को जानवर की नहीं हमारे नियत पे ये है कि हम हमारी नियत बदले और हम इस उसकी तरह रुजू हो जाए। तो अगला कलाम है, या रब मैं बदलना चाहता हूँ।

वही आदतें, वही गलतियां, वही कमजोर लम्हे। मैं रोज सोचता हूं कि मैं बदल जाऊंगा, मगर हर सुबह

जी हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैसेज आया है गफूर भाई की तरफ से, जो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटीफुल सिलेक्शन रिमाइंड्स मी ऑफ अ हज इन 2015 में अल्लाह प्रोटेक्ट था लाहौर जहाज एंड रिटर्न देम सेफ बैक होम। इंडीड द ट्रूथ अ सैड ईद इट वाज फॉर माय सिस्टर रुबैदा चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, मे अल्लाह प्रोटेक्ट देम थ्रू दीज डिफिकल्ट टाइम्स, अ ब्यूटीफुल लाइन ऑफ पापा एंजॉइंग एवरी मोमेंट। और गफूर भाई की 46th वेडिंग एनिवर्सरी थी, 46th वेडिंग एनिवर्सरी 26 मई को थी माशाल्लाह। तो गफूर भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आपकी खूबसूरत बेगम हलीमा आपा को। हमारी तरफ से अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपका साया आपके बच्चों पर रखे और ये बंधन और मजबूत रहे और इंशाल्लाह ता कयामत तक आपकी जोड़ी सलामत रहे। हमारी दुआ है। अगला कलाम असलम साबरी की आवाज़ में, काबे का काबा।

बेशक बहुत ही खूबसूरत कलाम था ये असलम साबरी साहब की आवाज़ में. रात के तकरीबन 9:40 होने जा रहे हैं और प्रोग्राम की समाप्ति का वक्त हो चुका है. और आज की तारीख 4 हुए हैं शकूर मौज़र साहब को इस दुनिया से रुख्सत होते हुए नखलिस्तान के. तो अल्लाह ताला उनको आला मकाम दे जन्नत का और सबसे ऊंचा दर्जा और उनकी मगफरत करें. अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हमारे गुनाहों को पाक कर दे और हमें और आपको मुकर्रब बंदों में शामिल करे और हमारे हर ख्वाहिश को पूरा करे. अल्लाह आपको हम कयामत के दिन जिन पर ना कोई खौफ होगा ना गम जबकि चेहरे चमकते होंगे और हम उनमें शामिल हों, ये हमारी दुआ है. और उम्मीद से रहे क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है.

एक मैसेज आया हमारी प्यारी रशीदा पाक की तरफ से जो कहती है सलाम टू एवरीवन, अ हार्टफेल्ट शुक्र टू ईच एंड एवरीवन फॉर योर कंटिन्यूस दुआस फॉर शुक्र मौजर. टुडे मार्क्स द फोर्थ ईयर व्हेन ही लेफ्ट दिस दुनिया. ही इज श्योरली मिस्ड एंड मे अल्लाह ग्रांट अस टू कंटिन्यू विद हिज लेगेसी ही लेफ्ट बिहाइंड. मे अल्लाह रिवॉर्ड हिम इन आखिरा एंड ग्रांट हिम जन्नतुल फिरदौस इंशाल्लाह.